मेरे प्यारे देशवासियों, आई विल स्पीकिंग टू यू अबाउट सम क्रिटिकल इश्यूज एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस। टुडे आई वांट टू मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ब्रेक द ग्रीप ऑफ करप्शन एंड ब्लैक मनी। वी हैव डिसाइडेड दैट द 500 रुपी एंड 1000 रुपी करेंसी नोट्स प्रेजेंटली इन यूज होर्डेड बाय एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स विल बिकम जस्ट वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पीपल विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। आई हैव कॉन्फिडेंस in 125 crore people of India, and I'm sure country will get success. Thank you very much. Thanks a lot. Namaskar. Bharat Mata Ki Jai.